गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरंतकारे भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च।

0: तपाईं रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।
1: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो किनिङा रंगदा बेनन्द माईबरी प्रोत्साहित लाबरी सेमुला जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुल्ला स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी समक बसुगो अंक 41 दी रंगिदा स्वागत मुला ना वियोग तामाङ हिरा सर डिप्रेसन ला अनुभव लाजिबा गदे दा माई सुगो न्यानो शब्द गदे थेनी गदे ला विश्वास दा पुनर्जीवित लसुगो थे शब्द गदे प्रेम देन आशा से प्लिङमा दादोला स्यन्दो दा प्रोत्साहन पिन्से थेनी गदे ला लुइरी गेन प्रभाव दला हिब्रू 10:24 यंगसे गिक्सेन गिक दा माया लवदेन जबगे लवला लागिरी आड खबर खाला ताम जे लाई जब यंग स्यन्दो दा थेनी कदे कदे अद्भुत देन विशेष मुला बिसी पाङमुला जब यंग थेनी गदे विवा गे देन वा थेनी गदे ला उपस्थिति ला लागिरी विशिष्ट देन इमानदार प्रशंसा लवन थे शब्द गदे से थेनी गदे दा उत्थान लवरी देन प्रेम देन जेबा गे गदे से प्रिङबा लुइग्यार पिबरी रु लमु ला एबीसी 4:29 एनी गदे रंग रंग नंगरी आजेबा ताम थलाउ बरु जेबा ताम देन सन्दो द मिला विश्वास बडप तबन निबा खाल्ला ताम जे लाउ तिक द विषम एनी गदे से लव ताम ग्याम मि गदे द जेबा तगै सु रुइरी यंग निरन्तर आलोचनाला शिकार ताला मि गदे से यंग से लव हजिबै नन गल्ती द पुइ बरी हतार लमुला थेनी गदे से यंग द अयोग्य वा असफल बिवारी हमला जब दोना यंग थे मी गदे दा फिल्टर लवरी अहम थेन दे थेनी गदे दा परमेश्वर ला वचन से आजेबा लवरी अहम थेनी गदे से यंग दा दुख देन पराजय ला खारल दी लसेला मुला बरु जब यंग संदो दा सुधार लवा ताम गदे से पांगला चुदा थे गदे दा अनुग्रह पिन मुला रोमी 15:5 दुख नखम्बा शक्ति देन आठ पिनबा परमेश्वर सेन एनी गदे द ख्रिस्ट येशु रंगमन दोषी ब्रबदिन रंग रंग नोंगरी दिक्षी चिखम्बा सेम पिनगै यंग देन हाई मदमन धैर्यवान मुसुला रोसे यांगला कमजोरी गदे द क्षमा लसुमुला रोसे यांगला गल्ती गदे ग्याम बचाव लसिल्ला प्रतिज्ञा लसुमुला रोसे यांग दा हाई मदमन प्रोत्साहिन पिनमा मुसुला यांगसे एन सन्दो द थेरङबन व्यवहार लवा प्रयास लदोला एक थेसलोनिकी 5:14 जो जो आले नानाङा बे गदे द अर्ति पिनमदेन हरे सब गदे द आठ पिनगो ओछे अखम्बा गदे द रो लवा देन जम्मलन ओन छरी जबा गे लसी उनगो सुमुला रोसे याङला गल्ती गदे ग्याम बचाव लसिल्ला प्रतिज्ञा लसुमुला रोसे याङ दा हाइमा दमन प्रोत्साहिन पिनमा मुर्स्युला यांगसे एन सन्दो द थेरङबन

सर। एलजी ले ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज, अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी को कंप्लीट रेंज, 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई, नागरिकता भाई पुग्छ, हर एक घर को खुशी, घर घर में एलजी, एलजी लाइफ गुड।

0: カス。ワールドカップ2026が行われます CGTV でライコさん V プラス3パスだかウォーレンティーさらに36,000様がキャッシュバックさじの 0% EMI コスビダーナグリッタバイポクサーワールドカップ2ワールドカップ CGTV ケンさんがいパノサーさんがい
1: クリシビカスベンクリミテッカーカルザグラハルライバーチュッサマンディアテントジャルリスウチナエスクリシビカスベンクリミテッバータビビンナミティマーカルザリー2082アサーマサンタマビガティンバサデヒभाखा नागेको खराब कर्जा अपलेखित कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा यस बैंकले धितो सकार गरेका कर्जा ग्राहकहरूले यही मिति 2083 असार मसान्त भित्र बैंकलाई बुझाउनु पर्ने सावा ब्याज र अन्य लेना रकम सम्पूर्ण चुक्ता गरेमा ब्याज रकममा आकर्षक छूटको व्यवस्था गरिएकोले समयमै आफ्नो कर्जा चुक्ता गरी उक्त सुविधा लिनुहुन अनुरोध गर्दछौ। विस्तृत जानकारीको लागि यस बैंकका सम्बन्धित शाखा कार्यालयहरूमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ। कृषि विकास बैंक लिमिटेड, मुख्य कार्यालय रामसाहा पथ, काठमाडौँ।

0: लस हे मेबे फेबे मा रंगमाजे आरसीसी दिम गोरा चहरा दिन प्ले रखोर मा नग फारम मा असिम चमटार की ट्रनेल मा सिंगबे सुर सिंजेपल मुबा होले सिंगबे सुर मुसम ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सेगो है रोमा हुजुरी मी टीम फिटिंग सिंगबे अंतरराष्ट्रीय स्तर ला जम्मनु सामान मा होलसेल मूल्यारी यंगबा असेम दिम सम्मन बोरबारी ढुवानीला सुविधा न मुबा क्रयुर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 01052470 असेम 98511 87882 फोन सिंजिम सेगो है रोमा
1: तपाईं रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।

0: रेडियो बिहानी
1: 97.6 MHz
2: सयों रेडियो हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।

पांसाई पांडव का पक्ष में वो गुरु भीष्म भए भीष्म का अधीन में कमांडिंग भए को यार अचनी फौज थियो भन्ने किन पांडवर को पक्ष में पांसाई पांडव का साइलो भाई भगवान नर नारायण श्री कृष्ण को साथी गांडीव धनुर्धारी साइलो भाई अर्जुन को कमांडिंग में सात अक्षणी फौज थियो सारा युद्ध भयो र एगार अठारह अक्षणी फौज को सत्यानाश भएर धेरै कुराहरू हुनै थियो तर यही दिन के हो भन्ने किन पांडवले पांडवहरूले आफ्ना भाई बान्धवहरू सारा बोलाएर नरैन।